कीर्तन कर दिया, उन्हें व्यर्थ का जो गुना लिखी न बच गई। सब कृपा से कृपा कर सब का गावे सुने तक इतवाल कर लैन। दरो प्रभुत के नाम की रात न एक चोरी पर दूर कर दे। बख्शो उसकी पर उस नफ्त राखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: Sudah berlangsung. Kita terjadi. Kemudian perkara pun lagi cuma bersih. Satu pasca kita kali. Satu gagalnya semua. Darat perwan kalian. Darug rosuk ke. Nama di datangnya curi perpur kaje. Sebab sesi. Karo satu teraku jiwa hidup kita वाहिगुरु जी की फतेह
1: केबुदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह स्वा विलियम्स लेक तो प्रसारित कीता जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कश्मीर दे हिंदू विद्वान पंडतां दा सारा हाल कह सुनाया कि पुत्र जुलम दे भांबर बहुत उच्चे जा चुके हन, जिस विच ए निताने गरीब बालन दे थां ते झोके जा रहे ने। हुण किसे परमात्मा दे की सी लोड़ है जो अपने खून दे पवित्र छिट्टे मार के बलदे होए लांबुआ नूं शांत कर सके। पिता जी फिर इसका की हल हो सकता है? तां पिता जी ने जवाब दिता, पुत्र कुर्बानी तो बिना होर कोई राह नजर नहीं आउंदा। तां उस समय बाल गुरु बोले दे के बलिदान अपना डुबदा धर्म जे बचदा बचाओ सतगुर महापुरख है आपको बिना केड़ा तुसी आप ही शहीद हो जाओ सतगुर।

साहिबजादे दे दलेरी परे वचन सुन के गुरु साहिब दी सारी चिंता दूर हो गई। बालक गोविंद राय जी नु गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कुट के छाती नाल लाया ते निश्चय कीता कि सिर दे के करिए।

आनंदपुर शहर तो चल के गुरु तेग बहादुर जी महाराज आगरे पहुंच गए। ते उधरों कश्मीर दे हिंदू विद्वान पंडता ने जाके बादशाह औरंगजेब नु कह दिता के बादशाह जे तो साडे गुरु

भाग्या किस तेरा को तेरा किसकी आशिका ठगा नु भाग्या किस तेरा को तेरा किसकी

तेरे जल से लिख के स्नेहा हत्थी मौत बल खल से लिख के स्नेहा हत्थी मौत बल खल से मौत भारी कोड़ी हंस वीर।

सत्संग जी पुत्र चुकी लिया है अपने पुत्र चुकी लिया घर वाल घर लिया के अदर पाती बारो कुंडा ला के जिंदा लाता भी महाराज आवे चरण पाउंगे बाद ची संस्कार करा गे फीस उसे रख उधर की होया सेठ दिन चढ़िया जाके खोलिया बुआ दुकान का जदों गेट खोल के अंदर वड़िया सामने शरीर पिया बेचिया डर गया लहू लुहान होया पिया पछाण नहीं आती सी सही नहीं धड़ पिया गला कहिंदा दिन चढ़ जाना फौजा ने आ जाना पता लग जाना लै जाणगे फड़ के भी सेठ ने कतल करता मेरे सिर कतल पै जू लाश मेरे घर पई दुकान च पई हुण केड़ा जिहड़ा लाश चुके आप डरदा सेठ डरदा लाश कौन चुके सम्मण की याद आ गई कहिंदे ओह अगे भी मेरे घर बड़े चिर तो कम करता इधरला समान उधर लै गया उधरों इधर लै आया वह मेरा समान बाहर अंदर लैके जाता उही लगा जाता फिर सम्मण दे घर सेठ गया दिन चढ़िया ही जीए बार बड़ा आखा गया सम्मणा सम्मणा हाथ जोड़ के सेठ जी

0: आओ महाराज, मेरी आवाज जाती नहीं, मैं तो बड़िया आवाजा मारिया, मां आवाजा मारती नहीं, रह जाती लै जाते ने चुक के कोलो अर्थी पहुंचती है कितने किसी की भी नहीं आवाज पहुंचती। रोंदी रह जाती घरवाली, रोंदे रह जाते निके निके बच्चे लै जाते ने चुक के वो शरीर जिन्हों केंद्र वेखे तो बिना बचते नहीं, अखा के सामने सड़क के कोले बन जाते, किसी की आवाज नहीं जाती, सुनते ही नहीं गई, पर आवाज जाती है उसे पहुंचती आवाज। महाराज कहते सौ गया, हाँ जेडे कीर्तन करने वाले जी कहते समणा वो सतगुर तेरे घर आए ने, क्यों भुल गया सुत्र कितने चलिया जाएगा, फिर चलिया जाऊंगे कितने नहीं जा सकता। आवाज मारी सतगुरां ने मूसणा, उदण ते कहिंदा सी आयो जी चरण पायो, अज आए बैठे हाँ संगतां आईया बैठिया है सेवा करन दा, तू सतनाम
1: वाहिगुरु
0: अंदर वड़ के सौ गया तू। इधर आवाज पैगी, सम्मण भी आवाजा लग पा मारनो पुत्रा।

कोट जन्म भ्रम आया प्यारी अनक जोन दुख पाई साचा साहिब विसरिया प्यारी बहुती मिले सजाई जिन पीते पूरा सतगुरु प्यारी ते लागे साचे नाई तिन्ना पिछे छुटिया प्यारी जो साची सरनाई मिठा करके खाया प्यारी तीन तन की तारोग कौड़ा हुए पतिस्या प्यारी तिस्ते उपजिया सोग भोग पुंछाए पुलायन प्यारी उतरे नहीं वजोग जो गुर मेल उधारिया प्यारी तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारी चेतना आवे मूल जिन तू विसरह पार ब्रह्म स्वामी चेतन होए तूड़ बिललाट करह बहु तेरिया प्यारी उतरे नाही सूल जो गुर मेल सवारिया प्यारी तिनका रहया मूल साकत सांगना कीजे प्यारे जे का पार वसाई जिस मिले हर विसरे प्यारी सो मुहि काले उठ जाय मन मुख ढोई नह मिले प्यारी दरगाह मिले सजाई।

अनेक तिस भयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एहो मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले चौथे की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला सोरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल ना कत मन जीवे सच्चा सोए ससुरे पिए पैवती सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावे पिर संग सदा शिंगारी नाओ मन कदे ना मैल पतंग देवर जेठ मुए दुख ससु का डर केस जे पिर भावे नानका कर्म मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावणी जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावे अपना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लभई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सत गुर नाम दृढ़ाया मन अनत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गोल गोले पौड़ी तू आपे शिष्ट करता सिरजन हारिया तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सुआरिया दाता करता आप आप भोगण हारिया सब तेरा शब्द वरतै उपावन हारिया हों गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया सलोक महला तीजा हों मैं जल ते जल मोए भ्रम आए दूजै पाए पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए एहो जग जलता नदरी आया गुर कै शब्द सुपाए शब्द रते से सीतल पए नानक सच कमाए महला तीजा सफलो सतगुर सेविया धन जन्म परवान जिन्ना सतगुर जीवंदिया मोया ना विसरे से पुरख सुजान कुल उधारे अपना सो जन होवे परवान गुरमुख मोए जीवंदे परवान है मनमुख जन्म मराहे नानक मुए ना आखी है जे गुर कै शब्द समाहे पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव हर नाम ते आई है सत संगत साधु लग हर नाम समाई है हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है हों गोला लाला तुद मैं हुक्म फुरवाई है हों गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाई है सलोक महला तीजा पूर्व लिखिया कमावना जे करता है आप लिखियास मोहठ गौली पाइन विसरिया गुणतास मत जानो जग जीवंदा दूजे पाए मोहयास जिन्नी गुरमुख नाम ना चेतो से बहन ना मिलनी पास दुख लागा बहु अत घना पुत कलत ना साथ कोई जास लोका विच मोह काला हुआ अंदर उबे सास मन मुखा नु को ना वे सही चुक गया वे सास नानक गुरमुखा नु सुख अगला जिन्ना अंतर नाम निवास महला तीजा से सहन से सजना ये गुरमुख मिलह सुपाई सतगुर का पाना अन दिन करह ते सच रहे समाई दूजे पाए लगे सजन ना आखिए है जे अभमान करह वेकार मन मुख आप स्वार्थी
कार्ज ना सकह सवार, नानक पूर्व लिखे आत्मावना, कोई ना मेटनहार पौड़ी, तुदे आपे जगते अपाए कै, आप खेल रचाया, त्रै गुण आप सिरजिया, माया मोह वधाया, विच हों मैं लेखा मंगी है, फिर आवे जाया, जिन्ना हर आप कृपा करे, से गुर समझाया, बलिहारी गुर अपने, सदा सदा कुमाया, सलोक महला तीजा, माया ममता मोहनी, जिन विन दंता जग खाया, मनमुख खादे गुरमुख उबरे, जिन्नी सच नाम चित लाया, बिन नावे जग कमला फिरे, गुरमुख नदरी आया, संदा करतिया निफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया, नानक नाम तिना को मिलया, जिनको तुर लिख पाया, महला तीजा, घर ही मह अमृत भरपूर है, मन मुखा साधना पाया, ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने, भ्रम दा भरम भुलाया, अमृत तज बिख संग्रह, करत आप खवाया, गुरमुख विरले सोजी पई, तिना अंदर ब्रह्म दिखाया, तन मन शीतल होया, रसना हर साधे आया, शब्दे ही नाउ उपजे, शब्दे मेल मलाया, बिन शब्द सब जग बोराना, बिरसा जन्म गवाया, अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया पौड़ी, सो हर पुरख अगम है, कहो कित बिद पाइए, तिस रूप नारेख अदृष्ट कहो, जन क्यों ते आइए, निरंकार निरंजन हर अगम, क्या कह गुण गाइए, जिसे आप बुझाए आप, सो हर मार्ग पाइए, गुरपूरे वेखा लिया, गुर सेवा पाइए, सलोक महला तीजा, ज्यों तन कोलू पीड़िए, रतना भोरी दे, जियो वंजे चौखनिए, सच्चे संदड़े ने, नानक मेल ना चुकई, राती अतै दे, महला तीजा, सज्जन मैंदा रंगला, रंग लाए मन ले, ज्यों मजीठे कपड़े,

आए। सहसा रोग ना छोड़ई, दुख ही मह दुख पाए। नानक नदरी बख्श ले, शब्दे मेल मलाए। महला तीजा, जो सतगुरु ते मोह फिरे, तिन्ना ठौर ना ठाव। ज्यों छुट्टड़ घर घर फिरे, दोह चारन बदनाव। नानक गुरमुख बख्शी है, ते सतगुर मेल मलाओ। पौड़ी, जो सेवह सत मरार, से पवजल तर गया। जो बोले हर हर नाओ, तिन जम छड गया। से दरगाह पैंदे जाहे, जिन्ना हर जप लया। हर सेवह से पुरख, जिन्ना हर तुद मया। गुण गावा प्यारे नित, गुरमुख भ्रम पौ गया। श्लोक महला तीजा, थाले विच तै वस्तु पईओ। हर भोजन अमृत सार, जित खादै मन तृप्ती है, पाईऐ मोख द्वार। इहो भोजन अलभ है संतो, लभै गुर विचार। ए मदावनी क्यों विचों कढ़ी है, सदा रखी है उर धार। ए मदावनी सतगुरु पाई, गुरसिखा लद्दी पाल। नानक जिस बजाए सो बुझसी, हर पाया गुरमुख काल। महला तीजा, जो तुर मेले से मिल रही,

विनकर्मा क्या पाई है, पूर्व लिखिया कमाई पौड़ी, बह सखियां जस गाव है गावन हारिया, हर नाम सलाहे हो नित हर को बलिहारिया, जिन्नी सुन मन्या हर नाम तिना हो वारिया, गुरमुखियां हर मेल मलावन हारिया, हौ बल जावा दिन रात गुर देखण हारिया, सलोक महला तीजा, विण नावे सब परम दे, नित जग तोटा सहसार, मनमुख कर्म कमावनी, हौ मैं अंध गुबार।

लाभ सदा खटियाना में अपार विख विखी अमृत प्रगटिया कर्म पिया मनहार नानक सच सलाही है धन सवार नहार पौड़ी जिन्ना अंदर कूड़ वरतै सच ना पावई जे को बोले सच कूड़ा जल जावई कूड़े आरी रजै कूड़ ज्यों विस्ता काग खावई जिस हर होए कृपाल सो नाम त्यावई हर गुरमुख नाम अराध कूड़ पाप लह जावई सलोक महला तीजा सिखा चौ चकिया चौ आया तेहो मन इकत घर आन एहड़ तेहड़ छड तू गुर का शब्द पछाण सतगुर अगे तै पौ सब किस जाने जान आसा मन सा जलाए।

तिन तिग पहनन तिग खान महला तीजा हर गुण टोट न आवई कीमत कहन न जाय नानक गुरमुख हर गुण रवह गुण मह रह समाय पौड़ी हर चोली दे सवारी कड पैदी भगत कर हर पाठ लगा अधिकाई बहो बहो बिद भांत कर कोई बूझे बूझन हार अंतर विवेक कर सो बूझे इहो विवेक जिस बुझाए आप हर जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत हर सलोक महला तीजा प्रथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहान गुरमुख होए सो भउ करे अपना आप पछाण गुर प्रसादी जीवत मरे ता मन ही ते मन मान जिनको मन की प्रतीत नाही नानक से क्या कथह ज्ञान महला तीजा गुरमुख चेतना लायो अंत दुख पहुता आई अंदरों बाहरों अंधिया सुध ना काई पाई पंडित तिनकी बरकती सब जगत खाए जो रते हर नाय जिन गुर कै शब्द सलाहया हर स्यों रहे समाए पंडित दूजे पाए बरकत ना हो गई ना धन पल्ले पाए पढ़ थके संतोख ना आयो अन दिन जलत विहाय कूक पूकार ना चुकई ना संसा विचों जाय नानक नाम विहूनिया मुहे काल उठ जाय पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारी मिल पंथ दसाई जो हर दसे मित तिस हों बल जाई गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम त्याई हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुर तिस जिन सोजी पाई सलोक महला तीजा पंडित मैल ना चुकई ये वेद पढ़े जोग चार त्रै गुण माया मूल है विच हों मैं नाम विसार पंडित भूले दूजे लागे माया कै वापार अंतर तृष्णा भुख है मूर्ख भुखिया मोए गवार सतगुर सेवै सुख पाया सच्चा शब्द विचार अंदरों तृष्णा भुख गई सच्चा नाए प्यार नानक नाम रते।

आई, हम पर अज्ञान अंधेर है, शुद्ध ना काई पाए, मन हाथ सहज ना बीजेओ, भुखा के अगे खाए, नाम निदान विसारिया दूजे लगा जाए, नानक गुरमुख मिले वडियाईया, जे आपे मेल मिलाए पौड़ी, हर रसना हर जस गावे हरी सुहावनी, जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी, जो गुरमुख चखे साध सा त्रिपतावनी, गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझा।

मन तन आगै राख कै उभी सेव करे यूं गुरमुख आप निवारी है सब राज श्रेष्ठ काली नानक गुरमुख बुझी है जाय आपे नजर करी महला तीजा जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान नानक कुल उधार है अपना दरगाह पावह मान पौड़ी गुरमुख सखियां सिख गुरु मेलाइया एक सेवक गुर पास एक गुर कार लाइया जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिन्ना पाओ गुरु देवाइया गुर सिखा एको प्यार गुर मित्ता पुत्ता पाइया गुर सतगुर बोलो सब गुर आख गुरु जीवाइया। श्लोक महला तीजा नानक नाम ना चेतनी।

अग्गै पिछै सुख नहीं, मर जम्मै वारु वार, तृष्णा कदे ना बुझई, दुबदा होए खुआर, मुह काले तिना निंदका, तित सच्चै दरबार, नानक नाम विहूनिया, ना उरवार ना पार पौड़ी, जो हर नाम ते आईंदे, से हर हर नाम रते मन माही, जिन्ना मन चित एक अरादिया, तिना एक सबिन दूजा को नाही, से पुरख हर सेवंदे, जिन तुर मस्तक लेख लखाही, हर के गुण नित गावंदे, हर गुण गाए गुणी समझाही, वड्याई वड्डी गुरमुखा, गुरपूरै हर नाम समाही, सलोक महला तीजा, सतगुर की सेवा

का पौ मनवस्त ता सबा सूजी पाए। सतगुरे अपने घर वरतदा आपे लए मिलाए। नानक सतगुर मिले सब पूरी पई, जिसनों कृपा करे रजाए पौड़ी। तन तन भाग तिना भगत जना, जो हर नामा हर मुख कहतिया। तन तन भाग तिना संत जना, जो हर जस श्रवणी सुनतिया। तन तन भाग तिना साध जना, हर कीर्तन गाए गुणी जन बनतिया। तन तन भाग तिना गुरमुखा, जो गुरसिख लै मन जिनतिया। सब दू वड्डे भाग गुरसिखा के, जो गुर चरणी सिख पड़तिया। सलोक महला तीजा, ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्मत रह। एक शब्द लिवलाए, नव निधि अठारह सिद्धि पिछे लगियां फिर। जो हर हिरदै सदा वसाई, बिन सतगुर नाओ ना पाई है।

देखो अपनी भगत की खातर परमात्मा ने रूप बदलना पे नरसिंह का रूप धारण किया ते इसने वर प्राप्त किए हुए सन हरनाथ सिंह कि ना मैं दिने मरांगा ना नाथ नूं ना धरती ते ते ना आसमान ना अंदर ना बाहर ना किसी हथियार नाल परमात्मा ने इस दे वर भी पूरे किए जदो इस नूं मारिया दिन छिपदा पिया सी ना दिन सी ते ना रात ये ना अंदर सी ते ना बाहर दरवाजे दे विचकार इस नूं रखिया अपने पटा ते ना हेठां ते ना उपर ना धरती ते ना आसमान ते विचकार रखे ते ना किसी हथियार नाल मारे बल्कि नखूना दे नाल अपने इस नूं चीरिया इस नूं फाड़िया ते खत्म कर दिता।

हे वाहेगुरु, मैं ते कुछ भी नहीं किया, मैं ते कुछ करने जोगा ही नहीं हाँ, जो कुछ किया है ये तू ही किया है। ते मेरी तन तनु हो रही है चारे पासे, ये मेरी नहीं हो रही, ते तेरी हो रही है।

जाको आकरे परगा तोड़ी नाम जीव पाए है। लिख नाम है धर्म बाल्या सखे पर निपड़े तुम हाथ कडे जज मालिया था न पान पूड़िया मोह काल है दो जिक चल गए नरक से जन गए आधे से ठगन वालिया लिख नाम है धर्म बाल्या धर्म

कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा सवे इन सचो सच वरताया सच पाथनी सच कमाया सच पाया जिनका हृदय

साहिब सदा संभालियत की तपाई अपना साकाल बुरी जो कालिए मंदा मूल की ते लम्मी नजर निहालिए जो सर नाल हारिए।

बिन नावै पत जाए अस्पति। दस वसूले पाछे पावै, एक बस कारण भी खोट गुवावै। एक पी ना दे दस पी हिरले, तो मूड़ा कहो का करे। जिस ठाकुर स्यो ना ही चारा, ताको कीजे सब नमस्कारा। जाके मन लागा प्रमीठा, सर्व सुख ताहू मन बूठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अगंत साह अपनी दे रास, खात पीत बरतै आनंद उलास। अपनी अमान कछ बहुर साह ले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास न होवे। जिसकी बस तिस आगे रख है, प्रभ की आज्ञा मन मत है। उससे चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनक भांत माया के हेत, सर पर होत जान अनेत। बिरख की छाया स्यों रंग लावे, ओ बिनसै ओ मन पछतावे। जो दिसै सो चालन हार, लब त्रयो तह अंध अंधार। बटाऊ स्यों जो लावे नेहे, ताको हाथ न आवे के। मन हार के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया। मिथ्या राज जोबन तन मार, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती अश्व बस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता। मिथ्या त्रोम हो अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्ब को हिरे। मिथ्या नेत्र पेखत पर प्रिया रूपाद, मिथ्या रत्ना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को तावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बाखलेत विकारा। बिन बुझे मिथ्या सपे, सफल देहे नानक हर हर नाम ले। बिरथी साकत की आर्जा, साज बिना कह होत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए, मेघ बिना ज्यों खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों कृपण के निरारस दाम। तन तन ते जन जेह कट बस्यो हर नाउ, नानक ता कह बल बल जाऊ। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंडलावत। जानन हार प्रभु प्रवीण, बाहर पेख ना काहू पीन। अवर उपदेशै आप ना करै, आवत जावत जन में मरै। जिसके अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरै संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण प्राता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने। आपे आप आप करत निबेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा। उपाव स्याण सगल ते रहत, सब कस जाने आत्म की रहत। जिस पावे तिस लय लड़ लाए, थान समंतर रहा समाए। सो सेवक जिस

अवर ना पेखे एकस बिन कोए, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व को शोक, ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुलपवान, ब्रह्म ज्ञानी कह धीरज एक जो बसदा को खोदै को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक जो पावक का सहज स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मला जैसे मैल ना लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कह मन हुए प्रकाश जैसे तर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र शत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा मन अपने है सबते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए नानक जिन प्रभाव करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी तीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी से कछ बुरा ना पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपर्यास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी कह होए सो पला।

ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै एक कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परिवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्राव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माह, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अध्याखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सर्व सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुगत जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, उड़ता रह जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान, निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओह अपरस सगल निस्तार है, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रिया रूप ना पेख है नेत्र, साथ की टहल संत संग हेत, करण ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हरै, मन की वासना मन ते थरै, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मधे को ऐसा अपरस, वैष्णो सो जसु परसो प्रसन्न, विष्णु की माया ते हो भिन्न, कर्म करत होवै नहि कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बांछै, केवल भगत कीर्तन संग्राचै, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरै नाम जपावै, नानक को वैष्णो परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग, मन ते बिनसा सगला परम, कर पूजा सगल पार ब्रह्म, सार संग पापा मल खोवै, तिस भगवती कीमत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नितनीत, मन तन अर्पै विष्णु प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक कैसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबोध है, राम नाम आत्म में शुद्ध है, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित का उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो ना आवै, वेद प्राण सिमृत बूझै मूल, सूखम मह जाने अस्थूल, चौं वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौं वर्णा में जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, साध संग पावै जन कोए, कर कृपा अंतर उड़तारै, पश प्रेत मुग्ध पात्र पोतारै, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितै ना पाईऐ धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिस कै मान पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास बसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दर गह प्रमाण, अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सोझी परै, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरक तैसा उसोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी विखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर रख है तैसा तिन नाओ, आपे करण करावन जोग, प्रभावै सोई फुन होग, पसरियो आप हुए अंतरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पए निहाल, श्लोक उस्तत करह अनेक जन, अंत ना पारावार, नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनेक प्रकार, अष्टपदी।
कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन पर मैं उदासी, कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तपीश्वर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट कब काप विचार है, कई कोट नव तन नाम ध्यान है, नानक करते का अंत ना पावे, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट तिरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिरे, कई कोट पर दुख न करें, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट प्रदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पौन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्य सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र शिव छत्र, सगल समग्री अपने सूतार है, नानक जिस जिस पावे तिस तिस निसार है, कई कोट राज सामत सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरतार शास्त्र, कई कोट किए रत्न सुमंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिरजीवे, कई कोट गिरी मेघ सुवर्ण थीवे, कई कोट जख्य किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच, सब ते नेरा सब हूं ते दूर, नानक आप अलिप्त रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीव मरे, कई कोट बोझो निफिर है, कई कोट बैठ थी खाहे, कई कोट काले थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे, कई कोट पहे बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिल्यो प्रभ अविनाश, कई कोट मांग है सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार, कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट कीने भोपांत, प्रभ से होए प्रमाह समात, तांकांत ना जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते, सदा निहारे एको नेत्रे, कई कोट नाम रस्ती में है, अमर पहे सत सद ही जीव है, कई कोट नाम गुण गाव है, आत्म रस सुख सहज समावे, अपने जन को सास सास समारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे श्लोक, करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नानक तिस बलिहार ने, जल थल महियल सोए अष्टपदी, करण क्रावण करने जोग, ज्योतिष पावे सोई होग, खिन में थाक उठा पनहारा, अंत नहीं किछ पारा वारा, हुक्मे तार अधर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वड्याई, नानक समय रहा समाई, प्रा पावे मानुष गत पावे, प्रा पावे ता पाथर त्रावे, प्रा पावे बिन सास ते राखे, प्रा पावे ता हर गुण पाख है, प्रा पावे ता पतत उधार है, आप करै आपन विचार है, दुहा काय आप स्वामी, खिले बिकसे अंतरजामी, जो पावे सोकार करावे, नानक दृष्टि अवर ना आवे, कहो मानक ते क्या होए आवे, जो तिस पावे सोई करावे, इसका हाथ होए ता सब किछले, जो तिस पावे सोई करे, अनजान बिख्या मेह रचै, जे जान आपन आप बचै, परमे भूला दह दिस तावे, निमुख माहे चार कुंट फिर आवे, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, खिनमह नीच कीट कौराज, पार ब्रह्म गरीब आज जाका दृष्ट कछु न आवे तिस तत्काल दह दिस प्रगटावे जाको अपनी करै बख्शीश ताका लेखा ना गणे जगदीश जियो पिंड सब तिस की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई इस काबल नाही इतिहास करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस भावे सोई सुन थियो कभू ऊंच नीच में बसै कभू सोग हरख रंग हसै कभू निंद चिंद व्यवहार कभू ऊप आकाश प्याल कभू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कभू निर्द करै भोपांत कभू सोए रह दिन रात कभू महाक्रोध विकराल कभू सर्व की होत्रवाल कभू होए बह बड़ राजा कभू पेखारी नीच का साजा कभू अप कीर्त में आवे कभू पला पला कहावे ज्यों प्रभ राखे तिव ही रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे कभू होए पंडित करे बखियान कभू मोन तारी लावे ध्यान कभू तर तीर्थ स्नान कभू सिद्ध सातक मुख ज्ञान कभू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक जोन परमै परमिया ना
रूप ज्यों स्वांगी दिखावै, ज्यों प्रा पावै त्यों नचावै, जो तिस पावै सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए, कबहू साध संगत ए पावै, उस स्थान ते बहुर ना आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसह पार ब्रह्म के संग, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए।

नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसका अंतर राज अभमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जाना मैं जो बनवंत सो होवत विष्ठा काजन आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरै बहुजोन परमावै तन भूमका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानक इहा मुक्त आगे सुख पावै धनवंता हुए कर गुरबावै त्रिण समान कर संग न जावै बहु लश्कर मानक ऊपर करे आस पल भीतर ताका हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिनमह हुए जाए पसमंत किसै ना बदै आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दर्ग है प्रमाण कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुरग फिर फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दर्ग है को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे जिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेण जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझसे कछ होए तब इसको सुख ना ही कोए जावे जाने मैं किस करता तबलग गुरब जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तबलग नहीं चलना ही चीत जबलग मुह मगन संग माए तबलग धर्म राय देश जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे सहस कठे लाखो उठतावे तृप्त ना आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करे नह तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए बडभागी किसै प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्राप्त होए जो किछ कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हूँ कै संग बुझ है देखै करै विवेक आप है एक आप है अनेक मरे ना बिन सह आवे ना जाए नानक सद ही रहा समाए आप उपदेशा समझे आप आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो आपन विस्थार सब कछ उसकाउ करने हार उसते भिन्न कहूं के छोए थान समंतर एक सोए अपने चलते आप करने हार कौतक करे रंग अपार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मधै किने बिरले चीना पला पला पला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण वख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन परै सो जन उधरण हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत के दुखन आर जा कटै संत के दुखन जानते नहीं छुटै संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन शोभाते हीन संत के हते को रखे ना कोए संत के दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक पीतर है संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काल ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिग्ध जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै संत कै दुखन सब को छलै संत कै दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच नीचाए संत दुखी काथाओं को नाहे नानक संत पावै ता ओए पीगत पाहे संत का निंदक महा अस्ताई संत का निंदक खिन टिकन ना पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज देहीन संत का निंदक दुखिया आर्दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत की निंदा दोख मह दोख नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसै का नहीं मित संत के दुखी को डान लाग गए संत के दुखी को सब त्याग गए संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्मे मरे संत की दुखना सुख ते तरे संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत पावे तन लय मिलाए संत का दुखी अद बीच ते टूटे संत का दुखी कितै काज ना पहुँचे संत के दुखी को ध्यान परमाइय संत का दुखी उजड़ पाइय संत का दुखी अंतर ते थोथा ज्यों सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किछ नाहे अपन बीज आपे ही खाहे
संत के दोखी को अवर न राखन हार, नानक संत पावै तां लहे उबार। संत का दोखी इउं बिलाए ज्यों जाल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दोखी भूखा नहीं राजै ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै, संत का दोखी छुटै अकेला ज्यों बुआर तेर खेत माहे दुहेला, संत का दोखी धर्म ते रहत संत का दोखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुरही पया नानक ज्योति पावै सोई थिया, संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए संत के दोखी को दरगह मिले सजाए, संत का दोखी सदा सहकाई है संत का दोखी ना मरै ना जिवाई है, संत के दोखी की पूजै ना आसा संत का दोखी उठ चलै निराशा, संत का दोख ना तृष्टै कोय जैसा पावै तैसा कोई होए, पया किरत ना मिटै कोय नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसके उह करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात तिसै त्याहो सास ग्रास, सब कछ वरतै तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिसे अपन नाम दे बड़ पागी नानक जन से, श्लोक तजहो से आन पुसुरजन हो सिमर हो हर हर राय, एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पहु जाए। अष्टपदी मानस की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिस कह दिए रहे अघाए बहुर न तृष्णा लागे आए, मारे राखे एको आप मानुष कह किसना ही हाथ, जिसका हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक विघ्न ना लागे कोए, उस्तत मन में कर निंकार कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर लह जियो, नहनो तेग ठाकुर का रंग सार संग बिनसै सब संग, चरण चलो मार्ग गोविंद मिटह पाप जपिय हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक ऊजल मथा, बड़ भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करह विचार ते तनवंत गणी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने इत उसकी ओसो जी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया, गुर प्रसाद आपन आप सूझ है तिसकी जानो तृष्णा बुझ है, सार संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत, अन दिन कीर्तन केवल बुख्यान दृष्ट में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जम की आसा तिसकी कटिया जम की फांसा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख, जिसको हाथरा मन चितावे सो संत सुहिला नहीं डुलावे, जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किस से डरे, जैसा साथ ऐसा दृष्ट आया अपने कार्य में है आप समाया, सोधक सोधक सोधक सी जिया गुर प्रसाद तत् सब बुझिया, जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सूखम सोई अस्थूल, नह किस जन्म नह किस मरे आपन चलत आप ही करे, आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब सिष्ट, आपे आप सगल मह आप अनक जुगत रक्षाप उथाप, अवनाशी नाही किट खंड धारण धार रियो ब्रह्मांड, अलख अपेव पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सगल संसार उदरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेल लय कृपाल गुर का शब्द जा पय निहाल, उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करह बड़ भागे, नाम जपत पावै विश्राम नानक तिन पुरुष को उत्तम कर मान, जो किछ करै सुप्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग, सहर सुभाए होवै सो होए करमे हार पछाणै सोए, प्रभ का किया जनमीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिससे उपजे तिस माहे समाए ओए सुख निधान उन्हू बन आए, आपस को आप दीनो मान नानक प्रभ जाने को जान, श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार, जा कै सिमरन उधरिय नानक तिस बलिहार। अष्टपदी टूटी गंडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे तिस से बिरथा कोई नाहे, रे मन मेरे सदा हर जाप अवनासी प्रभ आपे आप, आपन किया कछु ना होए जेसो प्राणी लोचै कोए, तिस बिन नाही तेरा किछ काम गत नानक जप एक हर नाम, रूपवंत होए ना ही मोह है प्रभ की जो सगल घट सो है,
ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ ਜਾਂ ਸਭ ਕਿਸ ਤਿਸਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੈ ਅਤ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ ਰੱਬ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾਤਾਰ ਤਿਸ ਦੇਣ ਹਾਰ ਜਾਣੈ ਗਾਵਾਰ ਜਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਤੈ ਹੋ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਦਾ ਅਰੋਗ ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਣ ਜਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸੰਮਣ ਜਿਉਂ ਪਾਖਾਂ ਨਾਲ ਚੜਤਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤਰੈ ਜਿਉਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ ਜਿਉਂ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਤਿਉਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਤਿੰਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਛੋ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨਹਾਰ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਤਿਸੈ ਜਿਤਾਰ ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖਮਾਨ ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੈ ਅਜਾਨ ਕੌਣ ਬਸ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਲਪਟ ਰਹੇ ਰਸਲੋ ਵੀ ਪਤੰਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤੀ ਘਰ ਜਾਹੇ ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੋਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿਤੋਲ ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤੈ ਸੰਚਾਰ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ ਧਨ ਧਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਏ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਏ ਇਹ ਵਾਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ ਅਟ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਧੂ ਪਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ ਅਣਖ ਵਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤਹਿ ਦਰ ਆਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾਲਨਹਾਰ ਭੁੱਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਹੇ ਸਭ ਕਿਸ ਤਿਸਕਾ ਉਹ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਵਾ ਨਾ ਹੋਗ ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਐ ਤਿਹਲੋਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਹੋਏ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਵਨਾ ਸੀਤਰਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ ਕਿਸੇ ਪਰਹਿ ਨਾਏ ਕਿਛ ਕੋਏ ਸਰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ ਸਾ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਮਨ ਇਹ ਅੰਦਰਾਓ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਭ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਘਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਾਜ ਮਹਿ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ ਤਪ ਮਹਿ ਤਪੀਸ਼ਰ ਗ੍ਰਿਸਤ ਮਹਿ ਭੋਗੀ ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾਹੀ ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੂਤ ਸਗਲ ਪੁਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿੰਦੇ ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਹਸੇ ਤੇਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋ ਭਰਮਾਏ ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਣ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾਂ ਕੇ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰੈ ਇਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਵਿਦ ਕੀਨੋ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਭ ਮਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰ ਨਾਨਾ ਚਲਤ ਕਰੇ ਖਿਨਮਾਹੇ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ ਨਾਨਾ ਵਿਦ ਕਰਬਣਤ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਉ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਣਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ਼ ਪਾਤਾਲ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪ੍ਰਿਆ ਸਭ ਭਵਨ ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗ ਉਧਰੇ ਸੁਣ ਸ੍ਰਵਣ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮਹਿ ਸੋ ਜਨਗਤ ਪਾਏ ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਹਿ ਸਮਾਣੀ ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਂ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤ ਤੇਜਨ ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਏ ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ
आपे जाने अपनी मितगत, जिसकी सृष्ट सो करने हार, अवर ना बूझ करत विचार, करते की मित ना जाने किया, नानक जो तिस भावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म भय बिस्माद, जिन बुझिया तिसाया स्वाद, प्रभ कै रंग रात जन दहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे, ओए दाते दुख का टनहार, जाकै संग त्रै संसार, जानका सेवक सो वडभागी, जानकै संग एक लेव लागी, गुण गोविंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै, श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच, अष्टपदी चरण सत सत प्रसनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत त्यावनहार, आप सत सत सवधारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभगता, सुरत सत सत जा सुनता, बुझनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जन्मानिया, करण करावन तिन मूल पछानिया, जाकै हृदय विश्वास प्रभाया, तत् ज्ञान तिस्मान प्रगटाया, तैते निर्भउ होए बसाना, जिससे उपजया तिस्माहि समाना, बस माहे ले बस गडाई, ताको भिन्न न कहना जाई, बुझै बुझनहार विवेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभ का सेवक नाम कै रंग, सेवक को प्रापा लनहारा, सेवक की राखे निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ धारै, नानक सो सेवक साथ साथ समारै, अपने जानका परदा ढकै, अपने सेवक की सर पर रखै, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की या पत रखै, ताकि गत मित कोई न लखै, प्रभ के सेवक को न पहुँचै, प्रभ के सेवक ऊंचे ऊंचे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह देश प्रगटाया, नीकी कीरी मह कल रखै, पसंद करै लश्कर कोट लाख है, जिसका साथ न काट आप, ताको राखत दे कर हाथ, मानस जतन करत बहु पात, तिसके कर्तव्य बिरथे जात, मारै न राखै अवर न कोए, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करह रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडानी, बारंबार बार प्रभ जपिया, पी अमृत इहमन तंत्र पिया, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, किस किस अवर नाही दृष्टाया, नाम धन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रस जो जन तृप्ताने, मन तन नामह नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम, बोलो जस जे बादन दात, प्रभ अपने जन कीनी दात, करह भगत आत्म कह चाए, प्रभ अपने स्यो रह समाए, जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक न जानो, आठ पहर प्रभ सह हजूरे, कहो नानक से जन पूरे, मन मेरे तिन की ओट लेहे, मन तन अपना तिन जन देहे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोका दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे, अवर स्यानप सगली छाज, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान ना होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा, श्लोक सत पुरख जन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसका संग सिख उधरै, नानक हर गुण गाओ, अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मलहिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख वडभागी है, सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल समारै, गुर के ग्रह सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन में सहै, आपस को कर कछना जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत होए निकामी, तिस को होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जे साफ करे, नानक सो सेवक गुर की मतले, बीस बिस्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्व निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एका आप नहीं कट परम, सह स्यान पलया न जाई है, नानक ऐसा गुरबड भागी पाई है, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत, पेटत संग राम गुण दवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे,
सुनकर बचन करण आघाने मन संतोख आत्म पतिया ने पूरा गुर अखियो जा का मंत्र अमृत दृष्ट पेखा हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिसलय मिलाए जेबा एक उसत अनेक सत पुरख पूर्ण विवेक काहू बोल ना पहुंचत प्राणी अगम गोचर प्राप निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किन ना पाई अनक भगत बंधन नित कर है चरण कमल हृदय सिमर है सद बले हारी सब गुरे अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्राव जपने ए हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमृत सो होए उस पुरख का ना ही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया कै संग ना लेप मन में राखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख तह तेनासे तपत माहे ठांड वरताई आनंद पे आ दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेशे पौ चूका निरपौ होय बसे सगद व्याद मन ते खै नसे जिसका सातन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी फित पाई चूके परम गवन सुन नानक हर हर जा श्रवण निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला धार जन सगली मोही अपने चरित प्रभा बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोए सर्व निरंतर एको सोए पोत पोत रविया रूप रंग पय प्रगाश साधक संग रच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ ना चाले बिन भजन बिखिया सगली छार हर हर नाम कमावना नानक एह तनसार अष्टपदी संत जना मिलकर हो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव समेत विसार हो चरण कमल देद में उतारो करण कारण सो प्राप समर्थ दृढ़ कर गो नाम हर वथ एह तन संचो होवो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठ उठतावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नितबा छमीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर औखत लाए सर्व निधान मैं हर नाम निधान जप नानक दरगह प्रमाण मन प्रबुद्ध हो हर कह नाए दह दिस तावत आवै ठाए ताको विघ्न ना लागै कोए जाके हृदय बसै हर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौ बिन सह पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म प्रगाश चित कर जाए बसै अविनासी कहो नानक काटी जम फांसी तत विचार कह जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा आवागमन मिटै प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव यूं रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनक उपाव ना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंशत नानक फल पाए संग ना चालस तेरे तना तू क्या लपटाव है मूर्ख मना सुत मीत कुटुंब अर बनता इनते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार अस हस्ती रस असवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझना बिगाना नाम विस्तार नानक पछताना गुर की मत तू लेह आने भगत बिना बहु डूबे स्याणे हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जपहो अवरा नाम जपाव हो सुनत कहत रहत गत पाव हो सार भूत सत हर को नाओ सहत सुभाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतर समैल बिन सजाए हो मैं विखैल होहे अचिंत बसै सुखनाल सात ग्रास हर नाम समाल छाट स्यान सगली मना सात संग पान है सच तना हर पूंजी संत करो व्यवहार इहा सुखदार गह जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जा कै मस्तक लेख एको जप एको सलाह एक सिमर एको मन आह एकस के गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर रहो प्रव्याप अनक विस्तार एक ते पहे एक अराध प्राचत गए मन तन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया प्रयाता शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जातक जन जाचा प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम सात जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गाओ
साथ साथ प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नितनीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महासुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन तृप्ता ने पूर्ण पुरख नहीं डोला ने सुपार परे प्रेम रस रंग उपजा चाहो साध कै संग परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अनदिन लेवलाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुकुत जन पया जन्म मरण दुख परम गया इच पुन्नी श्रद्धा सा पूरी रब रहा सत्संग हजूरी जिसका साथ लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों विसरै जे काल ना पाने सो क्यों विसरै जे किया जाने सो क्यों विसरै दिन सब किश दिया सो क्यों विसरै जे जीवन जिया सो क्यों विसरै जे अग्न में राख है गुर प्रसाद को बिरला लख है सो क्यों विसरै जे बेखते काढ़ है जन्म जन्म का टूटा गंध है गुर पूरा तप यह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो हुए काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आव जपो अवर नाम जपावो भगत पाए त्रिय संसार बिन भगती तन हो सीछार सर्व कल्याण सुख निदनाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नाथ नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ मन तन अंतर इही सुवाओ नेत्रों पेख दर्श सुख होए मन विकसै साथ चरण सोए भगत जना कै मन तन लंग बिरला को पावे संग एक बस दीजै करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कहीं ना जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ बख्शंत दीन दयाल भगत पछल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटां कर्त प्रतपाल आर पुरुष कारण करतार भगत जना कै प्राण आधार जो जो जपै सो हुए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनकराज भोग बड़े आई हर के नाम की कथा मन पाई भव भोजन का प्रसंगीत दसना जपती हर हर नीत पली सो करनी शोभा तनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास श्लोक